0: एमरजेंसी सेवा, आँखा संबंधी सेवा, दंत सेवा, फार्मेसी सेवा, एक्सरे, वीडियो एक्सरे, रक्त परीक्षण, होम सर्विस, ल्याब सेवा र निशुल्क टिकट, अन्य विभिन्न सेवाहरू। सिंगेटी हेल्थ केयर एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर प्राली बिगुचार सिंगेटी लामापगर जाने बाटोको दायाँ पट्टि सम्पर्क नम्बर 97 67 39 57 22।
1: समाचार विचार विश्लेषण मनोरंजन साहित्य र कला संस्कृति पर्यटन र विकासका लागि जनपक्षीय आवाज हाम्रो रेडियो 103.4 मेगाहर्ज।

0: साधारण सभा हुने मिति, समय र स्थान। मिति 2083 साल असोज 3 गते शनिबार, सुनखानी उपस्थिति केन्द्र 1, सेवा केन्द्रको कार्यालय कालिन्चोक 8 मेल डाँडा दोलखा। सुनखानी उपस्थिति केन्द्र 2, कालिन्चोक 9 कटुवा चौर। बाबरे उपस्थिति केन्द्र 3, मिलिजुली आधारभूत विद्यालय कालिन्चोक 2 बाबरे। बाबरे उपस्थिति केन्द्र 4, भगवती मादी कालिन्चोक 3 ध्याङ। बाबरे उपस्थिति केन्द्र 5, हिलेपानी संस्कृत माभि कालिन्चोक 4 हिलेपानी। निकोभूमे उपस्थिति केन्द्र 6, कालिन्चोक 2 निकोभूमे।
1: सिंगटी उपस्थिति केन्द्र 7, हेलिप्याड चौर बेगु 4 सिंगटी। लिङ्बा सोइसाङ उपस्थिति केन्द्र 8, बेगु 4 घ्याङ्गर डाँडा। गौरी शंकर उपस्थिति केन्द्र 9, गौरी शंकर 7 नाजिङ। थामी चाँगु उपस्थिति केन्द्र 10, सेवा केन्द्रको कार्य बिगुआ थामी चाँगु। मागा पौवा उपस्थिति केन्द्र 11, कृषि उपसंकलन केन्द्र सैलुङ 3 बाखुर। काटाकुटी उपस्थिति केन्द्र 12, वीरेन्द्र मावी सैलुङ 5 काटाकुटी।
2: फर्स्टको उपस्थिति केन्द्र 13, सेवा केन्द्रको कार्यालय सैलुङ 6 गोठपानी। फर्स्टको उपस्थिति केन्द्र 14, साउते मावी सैलुङ 7 कालापानी। नामदु उपस्थिति केन्द्र 15, सेवा केन्द्रको कार्यालय बैतेश्वर 6 नामदु। मार्बु उपस्थिति केन्द्र 16, बैतेश्वर 7 ओडा कार्यालय मार्बु। मैना पोखरी उपस्थिति केन्द्र 17, सेवा केन्द्रको कार्यालय बैतेश्वर 5 मैना पोखरी। मेलुङ र तामाकोशी गाउँपालिका उपस्थिति केन्द्र 18, तामाकोशी 3 डुरे बजार। र लिसङ्खु पाखर उपस्थिति केन्द्र 19, सेवा केन्द्रको कार्यालय लिसङ्खु पाखर 5 मुरे बजार सिन्धुपाल्चोक।
0: मिति 2083 साल असोज 4 गते आइतबार। भीमेश्वर नगरपालिका 1, उपस्थिति केन्द्र 20, भिनपा 1 मसान डाँडा छेमावती दोलखा। भिनपा 2, उपस्थिति केन्द्र 21, भीममावि भिनपा 2 दोलखा बजार। भिनपा 3 र 6, उपस्थिति केन्द्र 22, कालिन्चोक मावि भिनपा 3 चरीकोट। भिनपा 4, उपस्थिति केन्द्र 23, सर्वमावि भिनपा 4 टहले। भिनपा 5, उपस्थिति केन्द्र 24, महेन्द्रोदय मावि भिनपा 5 माटी। भिनपा 5, उपस्थिति केन्द्र 25, भिनपा 5 नयाँ पुल बजार। भिनपा 5, उपस्थिति केन्द्र 26, बुढा भीमसेन मावि भिनपा 5 किराती छाप। भिनपा 7, उपस्थिति केन्द्र 27, कुटीडाँडा मावि भिनपा 7 मकैबारी। भिनपा 7, उपस्थिति केन्द्र 28, कुप्री प्रावि भिनपा 7 कुप्री। भिनपा 8 र 9, उपस्थिति केन्द्र 29, देवी मावि भिनपा 8 बोझ।
2: मिति 2083 साल असोज 10 गते शनिबार। काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका शेयर सदस्यहरूका लागि न्यू त्रिशक्ति पार्टी प्यारेस पेप्सिकोला काठमाडौँ। मिति 2083 साल असोज 13 गते मंगलबार। मुख्य निर्णय प्रमाणित संस्थाको मुख्य कार्यालय भीमेश्वर नगरपालिका 6 चरीकोट दोलखा। नोट, यस सहकारी संस्थाका सबै स्थानमा हुने साधारण सभाहरू बिहान 9 बजेदेखि दिउँसो 4 बजेसम्म सञ्चालन हुनेछ।
1: साधारण सभाका प्रस्ताव तथा कार्यसूचीहरू, आर्थिक वर्ष 2082-83 अध्यक्षको प्रतिवेदन, सचिवद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन र आर्थिक वर्ष 2083-84 प्रस्तावित कार्यक्रम, कोषाध्यक्षद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष 2082-83 आर्थिक प्रगति प्रतिवेदन र आर्थिक वर्ष 2083-84 प्रस्तावित बजेट, लेखा सुपरिवेक्षण समितिको 83-84 प्रतिवेदन, आर्थिक वर्ष 2082-83 बाह्य लेखा परीक्षण प्रतिवेदन तथा आर्थिक वर्ष 2083-84 आर्थिक कारोबारको बाह्य लेखा परीक्षणका लागि लेखा परीक्षक छनौट र पारिश्रमिक निर्धारण, विनियम कार्यविधि नियमावली संशोधन र पुनर्लेखन, सहकीकरण, थप प्रस्ताव, प्रश्न र सुझाव, एकाइ निर्णय प्रमाणित प्रतिनिधि, मुख्य निर्णय पुस्तिका प्रमाणित प्रतिनिधि र विविध।
0: थप जानकारीका लागि शेयर सदस्यज्यूहरूलाई वार्षिक प्रतिवेदन अध्ययन गर्न सहज बनाउनका लागि संस्थाको वेबसाइट www.milijuli.coop.np, युट्युब च्यानल @milijuli कालिन्चोक साकोस 6358 र फेसबुक पेज मिलिजुली दोलखामा अपलोड गरिनेछ। शेयर सदस्यहरूले अध्ययन गरी संस्थालाई

विश्लेषण मनोरंजन साहित्य कला संस्कृति पर्यटन र विकास का लागि जनपक्षीय आवाज हाम्रो रेडियो 103.4 मेगाहर्ज।